0: रेडियो अन्नपूर्णा 93.4
1: के तपाईं यूके युनिभर्सिटी को द मोस्ट प्रेस्टिजियस येट अफोर्डेबल डिग्री पोखरामा लिन चाहनुहुन्छ? नेपाल के प्रतिष्ठित इनोवेट नेपाल ग्रुप आईएनजी द्वारा प्रवर्धित फिशनल माउंटेन कॉलेज में यूनिवर्सिटी अफ वुल्वरहैम्पटन यूके संघ को साझेदारी में बीएससी ऑनर्स साइबर सिक्योरिटी र बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में भर्ना खुल्यो। पोखरा के उत्कृष्ट फिजिकल एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर र मैनेजमेंट सहित वातावरण में अध्ययन गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क फिशनल माउन्टेन कलेज मुस्ताङचोक पोखरा, फोन नम्बर 9802 85 17 17 98 0

0: अपरेशन सेवा,
1: मृगौला तथा मूत्र रोग, न्यूरो सर्जरी,
0: पेट, छाती, मुटु, थाइरोइड तथा मधुमेह रोग,
1: न्यूरो सर्जरी सेवा,
0: बाल रोग,
1: नाक कान तथा घाँटी रोग,
0: मानसिक तथा स्नायु रोग,
1: प्रसूति तथा स्त्री रोग,
0: छाला, यौन तथा कुष्ठ रोग,
1: नेत्र रोग,
0: दाँत तथा मुख रोग,
1: क्यान्सर रोग, दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू, अत्याधुनिक माइक्रो डिफिब्रिलेटर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन,
0: 24 घण्टा एम्बुलेन्स, इमर्जेन्सी, अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा,
1: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे,
1: सिटी स्क्यान सेवा,
0: भिडियो एक्सरे, इको कार्डियोग्राफी,
1: इन्डोस्कोपी, इसीजी, इइजी, पीटीए,
0: फिजियोथेरापी, युरोफ्लोमेट्री,
1: केमोथेरापी,
0: सुरक्षित गर्भपतन सेवा,
1: होल बडी चेकअप, हेल्थ प्याकेज,
0: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली, पोखरा 8 सृजना चोक, कास्की,
1: फोन 061-572-648, 572-849।

0: বাতসালিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখারা, ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-0611।
1: आउनुहोस्, सँगै दौडौ स्वस्थ बनाऊ। प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार सँगसँगै दौडौ।
2: स्वच्छ पोखरा, स्वस्थ पोखरेलीको नारालाई साकार पारौ।
1: पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको आयोजक संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाड़ी मञ्चद्वारा नियमित साप्ताहिक र मासिक दौड़ कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएको छ। यस अभियानमा तपाईँ स्वयं सहभागी बन्नु।

0: आई एम सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। इट्स ओवर।

0: आई एम सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। इट्स ओवर।

0: वॉट इज दिस? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: सो वॉट, मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: You know, Shiv, it really hurts.